सवेरे 10 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। सवेरे 11 बजे FM न्यूज हेडलाइंस और उस तो ठीक बाद तुहाडा मन पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे पंजाबी तड़का। दोपहर 12 बजे दे FM न्यूज हेडलाइन सुनने तो बाद तुहाडा मन पसंदीदा प्रोग्राम जिस दे विच तुहाडे प्यारे घर नूं होर ज़्यादा प्यारा ते खूबसूरत बनाउण दे लई टिप्स देवांगे। प्रोग्राम रहेगा होम स्वीट होम। दोपहर 1 बजे मिड डे मेलोडीज। प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक पंजाबी खबरां। दोपहर 2 बजे दिल आज शायर है। इस नाल ही दोपहर 3 बजे तुहानूं लै चलांगे FM रेनबो दिल्ली केंद्र साडा खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर।

मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई रहा। परमात्मा जानता है कि जेकर सानू उस दे दर्शन दा आनंद मिल जावे तो साडे दिल दी जो भी पीड़ है वह दूर हो जाती है, क्योंकि साडे दिल दे अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, सिर्फ परमात्मा उसनों जानता है। उस दे बिना कोई होर नहीं जान सकता।

तेरे दासरे को किसकी काण, जिसकी मीरा रख है आण। जदों से परमात्मा नूं सच्चे मन दे नाल अपना मन लैंदे आ, ते हर मुसीबत दे विच, मुश्किल दे विच, बिना घबराए उस ते यकीन रख के उस नूं सच्चे मन दे नाल पुकार दे आ, परमात्मा अपने उस भगत दी पुकार

चिंतित ही दिसे सब कोई, चेत है एक तही सुख होए। जिंदगी दे विच बहुत सारिया चिंतावां रहिंदियां ने हर दम, लेकिन इस चित दे विच जेकर परमात्मा दा चिंतन कीता जावे, उसनू चेते कीता जावे, तां ही सुख है। क्योंकि प्रभु दे नाम सिमरन दे नाल मन नू, तन नू ते चित दे विच जिन्ने भी कष्ट कलेश ने, उनां नू दूर करन दी ताकत परमात्मा दे नाम दे विच ही है।

अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ। ये नाम जदों मैं बोल दी आ ना, मैं सिर्फ बोल दी किथे आ, मैं फील कर दी आ। ये नाम है ही इन्ना प्यारा, इन्ना खूबसूरत ते बिल्कुल दिल चुतरन वाला, क्योंकि ये नाम जदों ही कन्ना च पैंदा है ना, तो हाड़े चेहरे ते भी एकदम बिल्कुल ब्रॉड स्माइल आ जाती है, आंदी है ना। सो इसी नाम नु सुनने दे लई तुसी ट्यून करदे हो जी FM रेनबो 102.7 और फिलहाल 103.6 दे प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यून कर चुके ने, यानी कि अमृतसर वाले साढ़े प्यारे प्यारे लिसनर्स 6:30 तो लेके 10 तक बने रहेंगे साढ़े नाल और इससे ही फ्रीक्वेंसी दे जरिए। सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे लिसनर्स ट्यून कर देने FM रेनबो जलंधर नू, और किवें भूल सकते हैं उन्होंने जिन्होंने स्पेशली मेहनत दे नाल मैनुअली ट्यून करके न्यूज़ आनी है यार ऐप तो FM रेनबो जलंधर नू कीता है जी ट्यून इन। सो ये नाम इन्ना प्यारा है ना FM रेनबो, बिल्कुल इंद्रधनुष दे सारे रंगा दे सुमेल वाला ए चैनल आंदा है तुहाडी ते साडी जिंदगी दे विच सारे ही रंग भरन। सो ट्यून कर चुके हो जी तुसी तुहाडा ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो, और न्यूज ऑन AIR ऐप दे जरिए देशा विदेशा दे कोने कोने तो जुड़दे ने साडे प्यारे प्यारे लिसनर साडे नाल। और फिलहाल माइक ने इस पार सुन रहे हो तुसी मेरी आवाज, हां जी।

जान लिया कि क्या? हाँ जी चलो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पछाणे उन्होंने दसना तो बनता है ना। बिल्कुल दसना बनता है भाई, क्योंकि मैं शायरी जिहड़ी सुनाई सी ना, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, ते ये नाम कटे बोलन च ज्यादा मजा आंदा है। सो एफएम रेनबो दे इस माइक ते फिलहाल सवेर दे 5:53 तो शुरू कर चुकी है सफर तुहाड़ी दोस्त आरजी पूजा टोहानी लेके हाजिर हाँ जी तुहाड़ा फेवरेट वाला डेली वाला मॉर्निंग इनफोटेनमेंट वाला शो गुड मॉर्निंग जलंधर, जिस विच हुंदी है इनफॉर्मेशन ते एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज, ते नाल दी नाल मेरियां गल्लां बातां दा सिलसिला जारी रहिंदा है ठीक 10 बजे तक। हाँ जी गुड मॉर्निंग जलंधर 1.5 घंटे दा सफर 8:30 बजे तक, जिस विच सारियां तरह दियां आपां इनफॉर्मेशन जिन्नियां कि तुहानूं दे सकदी हां मैं कोशिश करूंगी फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस वालियां शेयर करां तुहाडे नाल। 8:30 बजे सुनोगे खबरां 10 मिनट दे लई, और जिवें ही 8:40 होणगे जिस सैगमेंट दा तुहानूं बेसब्री दे नाल रहिंदा ना इंतजार, बस उही सैगमेंट हुंदा है 8:40 तों 9 बजे तक, जिस दे विच तुसीं अपना वर्कआउट सैशन कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि मेरी कोशिश रहेगी कि तुहाडियां जिम दियां या फिर जिहड़ा वर्कआउट वाली कैलरीज आ ना, अज मैं तुहानूं घर बैठे कंप्लीट करवा दवा, बर्न करवा दवा कैलोरीज थ्रू द पंजाबी बीट सॉन्ग्स। सेगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा, 9 बजे मेरे तो ही न्यूज हेडलाइंस सुनूंगे और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम होएगा ओही जिसका तुहानूं रहिंदा है जी बेसब्री दे नाल इंतजार, ते मैनू भी पंजाबियां दे बिल्कुल दिलां दी धड़कन नूं सुणदा होया समझदा होया ते ओहदे अकॉर्डिंग चलदा होया प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी 9 तो 10 बजे तक। यानी कि आज कुल मिला के तुहाडा ते मेरा सफर है जी 10 बजे तक, ते मैनू लगदा कि हुण सफर दी आपां शुरुआत जिथे सारे प्रोग्रामां दे नाल कर ली है, आवाज़ दे नाल कर ली है, शुरुआत मिठी प्यारी हो चुकी है आज दी खूबसूरत जी हैप्पी वाली ब्लेस्ड जी एंड पॉजिटिविटी वाली ट्यूजडे मॉर्निंग दी, मंगलवार दी सवेर दी शुरुआत हो चुकी है। और मैनू लगदा है कि एक प्यारी जी आवाज़ दे विच गीत सुनना ते बनदा है ना, मिठा प्यारा जिहा गीत ओ भी तुहाडे लई प्ले करदी आ, जाना कितने नहीं है, फिलहाल इंजॉय करो ब्यूटीफुल जिहा ट्रैक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई

रहो, जीतती रहो, हर बार बार बार हर बार साड़ी तियां दी जित होवे, जिस भी फील्ड ते विच पैर रखन बस जित के ही वापस आउण। सलामती दी दुआ उन्हां दे लई। वेलकम बैक। सो जी ट्यून कीता होया तुसी एफएम रेनबो नूं, और मैं हां तुहाडी दोस्त आरजे पूजा टोहानी। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है जी गुड मॉर्निंग जलंधर मेरे नाल, और टाइम हो गया है जी तुहानू दसण दा कि अज इस गाने तो बाद जिहड़ा मैं हुणे प्ले करूंगी साडे टॉपिक ते एक्सपर्ट बिल्कुल रेडी ने। सो अज गल होएगी जी साडी बायोडाइवर्सिटी ते। बायोडाइवर्सिटी शिवालिक इको सिस्टम पंजाब दे विच किदां दा है, की चेंजेस आ चुकियां ने, ये सब कुछ की है और किस तरह इफेक्ट हो रहा है, की चेंजेस लियाउणियां जरूरी ने या आ चुकियां ने, और इस बारे गल करन दे लई रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर हरजिंदर सिंह रोज जी इन्हां दे नाल आपां गलबात करांगे। सो तुसीं जाना किते नहीं है, स्टे ट्यून रहना है। तुहाडे लई गाना प्ले करदी आं, गाने तो उस पार साडे खास मेहमान साडे नाल फोन लाइन ते होणगे। स्टे ट्यून एंड एंजॉय द ट्रैक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

कर्ज किया है, एक और एक मिल जाए तो बन जाते हैं 11। वाह वाह वाह वाह, एक और एक मिल जाए तो बन जाते हैं 11। खा लो, हंस लो, पी लो, जी लो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे भाई, अगला जन्म में पता नहीं कौन से जंगल में कौन सी नदी में यहाँ पड़े मिलेंगे, इस करके इको ही जिंदगी मिली है, छोटी जी लाइफ है ना, इन्हें एंजॉय करना चाहिए था। और एंजॉय तो वैसे तुम एफएम रेनबो ट्यून इन करके कर ही रहे हो, और इस सफर नूं अग्गे बता रही है कौन। तो 10:50 हो चुके ने, म्यूजिकली जर्नी जेडी एफएम रेनबो ट्यून इन करके तुम सवेर दी आज एंजॉय कर रहे हो। बस थोड़ा जा हूं अगला जेड़ा साथ अगला स्टेशन है वह चेंज करने के लिए, ड्राइवर साहब चेंज हो चुके ने। तो 102.7 एफएम रेनबो दे फिलहाल जुड़ चुकी है जी थोड़े नाल रिचा, ते मेरे वालों सभी दोस्तों नु प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और की हाल चाल है। गर्मी दे विच मैनू पता है सारिया दे हाल उद्दां दे होंगे जिद्दां दे मेरे हो रहे हैं। फिलहाल स्टूडियो दे विच मैं बैठी हुई हूँ और थोड़े नाल ए सफर, ते तुसी मेरे नाल ए सफर इंजॉय करोगे। और प्रोग्राम दी आपां शुरुआत कर रहे हैं जी गीत बहार, है ना जी। और गीत बहार प्रोग्राम दे नाल आपां इस सफर नू शुरू करांगे और सोहणे सोहणे गीतां दी बहार लैके अगैन रिचा हाजिर हो चुकी है। सो इंजॉय कर रहे हैं जी पहला गीत हर्षदीप कौर ते जोनिता गांधी दी आवाज़ दे विच, ते उस तो बाद मिल रही हूं तुहानू सिर्फ विद स्टे ट्यून्ड।

देखो वही चल रही है, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12 किश्ता दे विच जिंदगी मिली हुई है जनाब। और ये जड़ी इंस्टॉलमेंट है ना जिंदगी दी, कमेटी दी नहीं कह रही हूँ मैं, जिंदगी दी कह रही हूँ, ये लाइफ दी इंस्टॉलमेंट चलती ही रहेगी। जरूरी है कि इन्हों दे विच ना बस दिन दे विच कोई एक किश्त, कोई एक इंस्टॉलमेंट अपने बस अपने नाम कर लिए। ब्रेक की गल चल रही है और फिर देखो वापस वो ब्रेक आ गया कि जो भी टाइम चल रहा है 9 to 2 का हो, 2 to 6 का हो, 6 to again 9 का हो, है ना जी, इस टाइम दे विच ना बस कुछ सैकेंड्स या फिर कुछ मिनट्स असी अपने लिए जरूर कढ़िए और उन्होंने मिनट्स के विच, उन्होंने सैकेंड्स के विच कोई गीत सुन लिए, कोई गीत लिख भी सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, कोई वधिया जी रेसिपी बना के भी खा सकते हैं या फिर कितने बाहर एक छोटी जी वॉक शॉक करके भी आ सकते हैं, टॉक शॉक भी कर सकते हैं, ये थोड़े ते डिपेंड करता है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जी, अगला गीत इंजॉय कर रही हूँ और थोड़े नाल मिलके ही करांगी। स्टे ट्यून्ड, दिल से दिल तक।

म्यूजिकली आज आकाशवाणी एफएम रेनबो की हाल चाल है जी। रेनबो सुनने वाले हो 102.7 एफएम रेनबो ट्यून इन किता होया और इस टाइम आवाज सुन के सारियां दे दिल दे विच टूल दियां आवाज आए हाय हाय हाय उदे नाल नाल एक होर चीज जेड़ी है दिल दे विच आ चुकी है कि किवें आपा रेनबो दे नाल जुड़िए और अपनी आवाज नू रेडियो ते लेके आईए, नाल ही नाल रेडियो दे उस पार जो बैठी है दोस्त उदे नाल किवें करिए दिल दियां गल्लां बातां ते फरमाइशां पूरियां। सो 01812342174 जिन्हां नूं नंबर पता है थोड़े जे पिछे हो जाओ क्योंकि नवें नवें दोस्तों नूं भी मौका दे देना चाहिए है जिंदगी दे विच। सारा कुछ जो नवा नवा कुछ होंदा ना तो बहुत वधिया लगता है। उवें ही प्रोग्राम दे विच जो नवे नवे दोस्त जुड़ते हैं और नवीं नवी फरमाइशां लैके साडे कोल पहुँचते हैं तो सानूं भी बहुत वधिया लगता है। सो रिचा दे नाल तुसी करोगे जी ए वाला शो इंजॉय हुण ठीक दोपहर दे 12 बजे तक। सो पूरा एक घंटा साडे कोल है ना जी। फरमाइशां मैं लवांगी तुहाडियां और तुहाडे नाम नूं भी आपां हुण रेडियो ते लैके आना है, तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां ने और बहुत ही खास चीज़ दे भी अज आपां गलबात करांगे। की कुछ है वह सो दसांगी तुहानूं, लेकिन मैं कह रही हाँ जय स्वामी जी कह रहे ने जी मेरे नाल इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लो ते उस तो बाद मिल रही हूँ तुहानूं सिर्फ इत्थे स्टे ट्यून्ड।

102.7 FM रेनबो और 12:04:15 की सोच रहे हो डुंग डुंग करके आवाज आ रही है दिल से कि हाय रिचा आ गई है ते हुन दा पिटारा जिहड़ा है खुलेगा ते इस पिटारे च बहुत सारियां चीजां हमेशा मैं कहनी हां तुहाडे लई लेके आनी हां जी कुछ टिप्स कह लो छोटे छोटे कुछ DIY है ना हैक्स जो आपा खुद कर सकते हैं दैट इज डू इट योर सेल्फ जो असीं अपने लैवल ते ट्राई कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और अपने सोहणे जिहे घर नूं होर भी सोहणा जिहा बना सकते हैं जी क्योंकि होम दे नाल बनता है जी ये प्रोग्राम होम स्वीट होम और स्वीट स्वीट वॉइस दे नाल स्वीट स्वीट होम दे नाल आप बहुत सारे स्वीट देखो चीज़ां घर दे विच बना भी सकते हैं और नाल ही नाल अपनी गल्लां बातां दे विच थोड़ा जिहा शायद खोल के ना सामने वाले नूं ये भी दस सकते हैं कि ये जिहड़ी चीज़ है ना मैं रेनबो ते सुनी सी है ना सो खुशियां दा खजाना बनता लाइव रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो जिहदे नाल तुसीं वी इस प्रोग्राम दे जरिए कदी ना कदी कुछ नवा ट्राई कर लेना चाहिए हो सकता है कि तुसीं वी कोई तरीका है ना और अपने घर नूं तुसीं किवें साफ सफाई मतलब रखते हो सोहना जिहा बना के रखते हो या तुहाडे कोल भी कोई नुस्खा हैगा दादी नानी वाला या कोई खास रैसिपी तुसीं अज बना रहे हो जी अपने किचन दे विच तो मेरे नाल शेयर कर सकते हो 98 55 10 10 27 हाँ जी 9855101027 इस नंबर से तुसी मैनू व्हाट्सएप कर सकते हो कुछ भी है ना जी कोई रेसिपी तुहाडे नाल जुड़ी हो मतलब तुसी एक्सपर्ट हो उस रेसिपी दे विच या कुछ खास तुसी बना रहे हो तो फिर मैनू व्हाट्सएप कर सकते हो ते मैं तुहाडे लई बहुत सारियां चीज़ां लैके आई हाँ लेकिन उन्हां चों सब तो पहला गीत संगीत का जिहड़ा सिलसिला है उन्हों आपां किवें रोक सकते हैं सो अरिजीत सिंह नूं लैके आ रही हाँ फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करी हाँ तो उस तों बाद मिल रही हाँ तुहानूं सिर्फ इत्थे स्टे ट्यून्ड

हाई हील्स हो या फिर फ्लैट ही क्यों ना हो, चप्पल बड़ी सोहनी लगती है ना। सोहनी सोहनी चप्पल आप पाने अपनी ड्रेस नाल मैचिंग करते हुए, लेकिन जब टैनिंग हो जाती है, निशान जी पै जाते हैं, तो फिर पछताने भी आ कि आए हाय आ की हो गया कि हटूगा। सो बहुत सारे तरीके आप अपलाई करते हैं उस टाइम पर, है ना। वधिया वधिया ब्रांड के जिन्हें भी प्रोडक्ट्स ने वो भी अपलाई करके देख लेंगे, लेकिन ना कोई रिजल्ट जहाँ नहीं मिलता। सो एक तरीका है, नुस्खा ही कह लो, बड़ा वधिया कमाल का नुस्खा है और अपलाई कर सकते हैं आप। करना की है कि 2 चम्मच बेसन लेना है। देखो बेसन आप यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए, बहुत वधिया होंगे, रिजल्ट देता है ना। नैचुरल एक्सफोलीएटर है जी, बहुत वधिया काम करता है। सो 2 चम्मच बेसन ले लिया, तो वो आप करना की है मिलाना की है 1 चम्मच दही मिलाना है। हूँ गर्मियों का टाइम है और सारे घर के बच्चे बेसन दही और हल्दी ये नॉर्मल चीज़ा है ना, मिल ही जाए। सो टैनिंग दूर करने लेना बहुत वधिया है। हाँ, मैं यही नहीं कह रही कि बिल्कुल टैनिंग दूर हो जाएगी या फिर एकदम जिमें पैर साढ़े पहले से ही वापस आ जाएंगे, नहीं रे नहीं, सुन लिया करो पूरी गल। थोड़ा देखो असर जेड़ा है ना उदा घट हो सकता है और वधिया लग सकता है, हो सकता है आप डेली अप्लाई करिए तो वधिया रिजल्ट मिले। सो 2 चम्मच बेसन के 1 चमचा दही तो थोड़ी जी हल्दी मिला के एक पेस्ट जहा बनाना है। हाँ, स्मूदी तैयार करके पीनी नहीं है, पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट नू आप अपने पैरों के ठीक है थले लगा देना है, अपने फुट के उत्ते जो जिते भी टैनिंग के सानू निशान दिख रहे हैं, चप्पलों के जो निशान पै जाते हैं उत्थे आप लगाना है 15-20 मिनट लगा के। फिर उन्हों थोड़ा जा ना नॉर्मल कह लो कि या कोसे कोसे पानी नाल आप वॉश कर लिए धो लिए, तो थोड़ा जा असर यदा जेड़ा है ना वो घट होना शुरू हो जाएगा और टैनिंग जी है हो सकता सानू टाटा बाय बाय भी कर जाए, है ना जी। सो बहुत कमाल दी चीज़ा साडे किचन के विच ही हैगी, भावें हल्दी हो, शहद हो, नींबू हो या फिर बेसन हो, दही हो। सो इना दे कोई भी असरदार नुस्खा जेकर थानू भी पता है, तुसी भी अप्लाई करते हो या इना दे नाल जुड़ी कोई रेसिपी तुसी बनाते हो तो मेरे नाल शेयर कर सकते हो जी 98 55 10 10 27 नंबर से व्हाट्सएप करके। स्टे ट्यून्ड।

माय गॉड, मैं कह रही हूँ जी मेरे पड़ोसी भी बड़े ही अजब गजब हैं, और अजब गजब काम जड़े करते रहते नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को देख के लगता है कि है कि करता।

जुगाड़ू तो वैसे आपा नंबर वन आ, है ना जी। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, जुगाड़ आपा लगा ही लैने। सो हुण जुगाड़ लगा रहे हैं जेडे लैफ्ट ओवर साबुन यानी कि सोप के टुकड़े साडे घर दे विच बच गए सी। हुण मैं बड़ी कमाल दी एक DIY एक्टिविटी तुहानू दस रही हां। बच्चियां दे नाल समर वेकेशन दे विच भी आपा ट्राई कर सकते हैं और अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं एक फन दे लई। और जो वेस्ट चीज़ है बस उहदा भी कुछ ना कुछ बेस्ट हो जाएगा। सो कुछ बचे हुए जेडे साबुन दे टुकड़े सीगे आपा ओह लिते हैं। और 2 कप पानी लेना, ठीक है जी। साबुन दे अकॉर्डिंग पानी घट या वध भी कर सकते हैं। और एक छोटा चमचा, मैं तुहानू पहले किया सी ग्लिसरिन दा आपा लैणा, ते आपा लैणा जी एक छोटा चमचा नींबू दा रस, ठीक है। नींबू पानी ना बनाउण बैठ जाइयो, मैनूं पता गर्मी बहुत है, बना भी सकदे हो लेकिन उहदे विच साबुन ना मिला लिओ किते। चलो जी हुण बनाना किवें है, जिहड़े कि अपने छोटे छोटे ऑब्वियसली जो भी पीसिस रह गए ने सोप दे, उन्हां नूं आपां की करना, ग्रेडर दे नाल ना ग्रेड मतलब कि कद्दूकस करना, यानी कि या फिर छोटे छोटे टुकड़ियां च एक्चुअली तोड़ लेना, बिल्कुल, ठीक है जी। ते उस तो बाद की करना है, पानी दे विच पानी जिहड़ा अपना 2 कप पानी लेता उन्हूं गर्म करना है। उबालना नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं करना, बस एक हल्का जिहा जिवें गर्म हो जाए ते उहदे विच जो भी सोप दे टुकड़े ने उन्हां नूं पा के और चंगे तरीके दे नाल उन्हूं हिलाना स्टार्ट कर देना, सो दैट जिहड़ा साबुन है ना वो पानी दे विच मिक्स हो जाए। ओके, सो जदों वो वधिया तरीके दे नाल मिक्स हो गया ते उस तो बाद उहदे विच जो भी एक चमचा आपां ग्लिसरिन दा लिता है ते एक चमचा आपां लिता है नींबू दा रस, वो मिला देना है। क्यों मिला रहे हैं ये चीज़ां आपां ग्लिसरिन ते नींबू? ग्लिसरिन जिहड़ा है अपने हत्थां नूं देखो सॉफ्ट जिहा रखण च वो मदद करेगी, ते नींबू जिहड़ा है ना रस वो एक हल्की जी लाइम जी इफेक्ट खुशबू जिहड़ा ना फ्रैगरेंस है वो देगा। सो बस हुण एक खाली जिहड़ी लिक्विड बोतल आपां पहले ही लिती है ना लिक्विड दी, हैंड वॉश दी, पुरानी कोई बोतल रखी हो या फिर कोई भी बोतल जिहदा आपां यूज़ कर रहे हां वह आपां लै सकते हां। ते उहदे विच वह जिहड़ा अपना तैयार किया है ये अपना हैंड वॉश, होम मेड

सो एंजॉय कर रहे थे तो ये गीत, और इस गीत तो बात आपा करना की है, कुछ नहीं करना चाहिए, प्रोग्राम होम सी डोम नू टाटा बाय बाय करना, लेकिन रिचा कहते भी नहीं जा रही है, मेरा थी थोड़ा साथ जुड़िया हुआ दोपहर से 2 बजे तक, सो प्रोग्राम होम सी डोम दा हुण बिल्कुल आखिरला गीत आपा सुनते हैं जी विशाल ते श्रेया दी आवाज़ दे विच, ते उस तो बाद 1 बजे आ रही हां तुहाडे कोल, लग रहा प्रोग्राम लाइक स्टे ट्यून्ड।

म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 एफएम रेनबो और 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते नाल-नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्तां दा भी हुण असीं स्वागत कर रहे हां जी। सो एक बजते ही प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ की शुरुआत कर रही हूँ और बहुत सारे दोस्त इस टाइम है ना, हो सकता है इस टाइम उन्होंने मैं ट्यून इन किया हो और हो सकता है कि बहुत टाइम तो तुम FM रेनबो ट्यून इन करके अज मैनू यानी रचा नू सुन रहे हो। सो मेरे नाल हुण इस प्रोग्राम नू इंजॉय करोगे ठीक दोपहर के 2 बजे तक। सो मिड डे मेलोडीज़ की शुरुआत करें जी लता मंगेशकर की आवाज़ से गाए हुए इस गीत के नाल। स्टे ट्यून्ड।

पता था, मैनू भी नहीं है कि क्यों किया करते हैं, बट हाँ एक्चुअली मुहब्बत कितनी नहीं जाती ये तो हो जाती है ना, और कभी कभी मुहब्बत का जोड़ा अंजाम होंदा है वह वधिया नहीं होंदा, या कदे कदे होंदा है कि मुहब्बत जिहड़ी है सफल हो जाती है। खैर जो भी होए ये जिहड़ी मुहब्बत है ना दुनिया दे विच ये जिंदा रहती है हमेशा साडे ख्यालों दे विच साडे दिल दे विच, और हो सकता है तुहाडे नाल भी कदे कुछ इस तरह होया हो। चलो फिर उन्हूं याद करो और मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ नूं इंजॉय करो।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

बहार बनके एक सोहनी जी याद बनके और यादां दी पोटली चो यादां दे पिटारे चो है ना जी एक सोहनी जी याद हो सकता है इस टाइम इस गीत के जरिए थानू भी कोई आ गई हो क्योंकि जो तो सफ़र चलता है ना किसी हम सफ़र दे नाल और वो सफ़र बहुत सोहना हो जाता फिर यादां दी गल करां तो वो एक तो बाद एक याद जिहड़ी है ना जुड़दी जिहड़ी है चलदी चली जाती है कड़ी जिहड़ी है ना वो जुड़दी चली जाती है। सो ही सिलसिला चल रहा है जी यादां दा और मिडे मेलोडीज़ गीतां दा जिहड़ा सिलसिला वो भी चलता ही रहेगा और आशा ते गीतां दा दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत असीं इंजॉय करते हां जी स्टे ट्यून्ड।

FM ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਆਰਜੇ ਸ਼ਾਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਕੋ ਬੜਾਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਹੈ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਹੈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆਗ ਤੋ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਉਠੇਗਾ ਦਰਦ ਕੋ ਦਿਲ ਮੇਂ ਛੁਪਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਆ ਹੈ अजनबी रंग छलकता हो अगर आंखों से तो उनसे फिर हाथ मिलाने की जरूरत क्या है अगला जी सानू जड़ा मैसेज आया है इन्होंने लिखे है दूर हो फिर भी प्यार का एहसास होता है कि दूर हो फिर भी प्यार का एहसास होता है तेरा ख्याल हर वक्त मेरे दिल के पास होता है सोचता रहता हूँ हर वक्त तेरे बारे में सचमुच प्यार का एहसास कुछ खास होता है अगेना ने लिखा है हर वक्त तेरा इंतजार रहता है तेरे लिए सनम ये दिल बेकरार रहता है मुझे पता है तू नहीं किस्मत में मेरी फिर भी न जाने क्यों तेरा ही इंतजार रहता है तड़प कर देखो किसी की चाहत में पता चलेगा इंतजार क्या होता है यूं ही मिल जाता है बिना कोई तड़पे तो ये तो इन्होंने फिर तो रिपीट करती क्योंकि ऑलरेडी ये जिहड़ी शायरी है मैं पढ़ के तुहानू सारियां नू सुना दित्ती सी ये जिहड़ा सानू मैसेज आया है जी इकबाल सिंह चौहान जी ने ही सानू मैसेज भेजा है अगला मैसेज आया है अच्छा किसी साडे दोस्त ने मैसेज किया है बसंत सिंह जी ने कहते तुहाड़ी आवाज़ घट आ रही है इंज लगता है जिमें माइक तो थोड़ा दूर हाँ जी हूँ मैनू लगता है कि ठीक शायद आवाज़ आ रही होगी सारियां नू ही की गल मैनू लगता है रात जिहड़ा दोपहर का खाना खा के ना लंच करके तुसी सारे आराम कर रहे हो है मैं इत्थे वेट कर रही हूँ कि साडे जिहड़े लिसनर्स ने सानू मैसेज भेजन के फटाफट जिहड़ी शायरीज़ ने जिहड़ी तुसी पढ़ना पसंद करदे हो किसी शायर दी या फिर तुसी आप लिखदे हो अपने जिहड़े फीलिंग्स ने वो तुसी साडे नाल सांझा करोगे लै जी साडे जिहड़े मैसेज ने वो सारे ही मैं पढ़ ले ऑलरेडी

द लार्ज शायर प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਰਜੀ ਸ਼ਾਹਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਔਨ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। टूटा हुआ दिल था फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की, टूटा हुआ दिल था फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की, हर रास्ते पे अंधेरा था फिर भी चिराग जगाने की कोशिश की। किस्मत ने हमेशा निराश किया पर हमने हार न मानी, जितनी बार गिरते रहे उतनी बार संभलने की कोशिश की।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। आज रेडियो डॉक्टर में, क्योंकि आज वर्ल्ड आईबीडी डे है और इसलिए ये कार्यक्रम आज का स्पेशल होगा। आईबीडी क्या है, इन सब के बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में।
3: थैंक यू मैम फॉर वेलकमिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।
2: थैंक यू सर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी, और आप अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार हुई, हमें फोन करने के लिए तैयार रहिए। मैं डॉक्टर की पसंद का एक गीत आपको सुनवा रही हूँ।
4: मैंने

0: एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज वर्ल्ड आईबीडी डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, आज का ये दिन खास है बिकॉज कई वर्षों से इसको ऑब्जर्व किया जाता है आज के दिन। बहुत से लोग तो पहले यही जानना चाहते होंगे कि आईबीडी क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। लेकिन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में बताएं।
1: जी मैम, ये एक बहुत ही अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 19th of May वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड आईबीडी डे। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ दिस डिजीज। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी मतलब कि हमारे आंतों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उनमें लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आ जाता है तो उनको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बाउल मतलब आंत, डिजीज मतलब उसकी बीमारी।
0: जी।
1: तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर दो तरीके के आंत होती है, एक स्मॉल बाउल होती है, एक लार्ज बाउल होती है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। जब कोई बीमारी उसके इन्फेक्शन कर देती है लॉन्ग टर्म, उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं।
0: ओके। बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए डॉक्टर साहब, बिकॉज जैसे ही लोगों ने सुना कि आज का विषय ये है, तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं और आप यहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे, तो हम किस लिसनर से बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, अनूप कुमार फ्रॉम रांची।
0: जी सर, बताएं।
2: सबसे पहले तो हैप्पी वर्ल्ड आईबीडी डे। और सवाल पूछना था।
0: जी पूछे।
2: अमीबाइसिस डस्ट कॉज्ड बाय वाटर, अमीबाइसिस,
1: हाँ जी,
2: इसका क्योर कैसे?
1: देखिए, अमीबियासिस जो होता है ये एक कीटाणु होता है जिसके वजह से बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये फूड एंड वाटर में कोई कॉन्टामिनेशन हो तो उसके वजह से हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसका जो है पैरासिटिक के लिए दवाइयां आती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इनके साथ होती है कि बार बार अमीबियासिस हो जाता है तो इसलिए बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। बट ये किसी ऑलरेडी पेशेंट जिसको आईबीडी है, उसको अगर वो गलत खान पीन से होता है, उसको बार बार अमीबियासिस हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप हो सकता है। ही इज मोर प्रोन ये बीमारी से, क्योंकि इनकी बड़ी आंत कमजोर होती है, इन्फेक्शन की ग्रस्त होती है, तो बार बार ये इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को अपने खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए, हाइजीन वे में देखना चाहिए और फूड एंड वाटर का जो है खास ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी जगह से लें और उनका केयर करें।
0: यानी कि इन्फेक्शन जो होता है, इससे जो इन्फेक्शन लगने के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है डॉक्टर साहब, इज इट दैट?
1: नो, ये प्रॉब्लम पहले से ही होती है। हो सकता है कि
0: पहले से, मतलब जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी होता है?
1: नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जन्म के साथ होती है या हेरिडिटरी हो सकती है। बट ये है कि जब मालूम पड़ता है हमें, तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना होता है, एक एंटिटी होती है जिसको एक्यूट कोलाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलाइटिस मतलब एक ऐसी कोलाइटिस या इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज बाउल जो कि 6 महीने से कम ड्यूरेशन की है। अगर कोई इन्फेक्शन या डिजीज प्रोसेस लार्ज बाउल की होती है जो कि 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन की होती है, उसको हम क्रॉनिक कोलाइटिस या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का नाम देते हैं। कभी कभी कोई भी डिजीज जो होती है धीरे धीरे धीरे बॉडी में पलपते रहती है और एक टाइम आता है जब वो सामने आती है। जो ये सामने आती है, ये ऐसा हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन के टाइम में वो सामने आए, जैसे डायबिटीज़ भी, हाइपरटेंशन भी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये डायग्नोस होती है उसी दिन ये बीमारी बॉडी के अंदर पैदा हो गई। ये पहले से होती है लेकिन किसी कारण से बॉडी भी फाइट करती है डिजीज़ को दबाने में, बट एक टाइम आता है कि बॉडी नहीं कर पाती और वो अपने फ्लेयर अप करके सामने आ जाती है। ऐसे ही होता है कि कोई किसी ने खाना पीना खाया और उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर वो सामने आई। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया, ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है 1-2 हफ्ते में एंटीबायोटिक्स या कुछ वो करके ठीक हो जाती है। बट अगर वो नहीं ठीक होती, कभी कभी 2-3 वीक, 3-4 वीक तक ब्लीडिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती हैं, अर्जेंसी हो सकती है, तो ये सिम्टम जब 2-3 हफ्ते तक एक्सटेंड करती है तब हमें शक होता है।

0: है कि ये पेशेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त है, फिर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ मेजर इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन की एग्जामिनेशन। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, जो कि जैसे हमारे गार्डन पाइप्स होते हैं, पानी देने के लिए पाइप होता है, वैसे ही पाइप होती है। उसमें लाइटो कैमरा होता है। तो पेट को साफ करने के बाद डॉक्टर्स या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ये पॉटी के रास्ते हम उस पाइप को करते हैं और हमें बड़ी आंत देखने को मिल जाती है। बड़ी आंत से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली 3 mm का बायोप्सी होता है। उसको फिर लेके हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में वो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन होता है और तब हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से ग्रस्त पेशेंट है। ज्यादातर कभी कभी पेशेंट शॉक हो जाता है कि मैं जो अभी तक पता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हर चीज का होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हर चीज का होता है, तो उसमें ये पता चल सकता है। इसीलिए हमारा ये रिकमेंडेशन है, किसी को भी अगर सिम्टम्स हो इन टर्म्स ऑफ लूज मोशंस, ब्लीडिंग पीआर, पॉटी के रास्ते में ब्लड आ रहा हो, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हो, मोर देन 2 to 3 weeks ही शुड और शी शुड गो टू हिज अ विजिट अ डॉक्टर एंड गेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ एग्जामिन फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और IBD।
1: सो यू सजेस्ट कि अगर 2 या 3 हफ्ते तक आपको लगातार पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आप यकीनन समझें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर को जरूर देखें। यहां पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर के साथ।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इसके बारे में।
1: और आजकल हम ये देख रहे हैं दैट आईबीजी का एज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है।
0: डाउनवर्ड
1: ट्रेंड मीन्स पहले हम यूजली ये सोचते हैं कि जो ये बीमारियां हैं 40 से 60 साल की उम्र में होती हैं, पर आईबीडी वैसे भी बीमारियां एक्टिव एज ग्रुप्स की हैं जो कि 25 टू 45 एज ग्रुप की है। एंड आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि इवन बच्चे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकोगनाइज, बिकॉज इस एज ग्रुप में जब ये सिम्टम्स आते हैं क्योंकि लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इन बच्चों में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसिस बहुत आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के साथ साथ बच्चों में ग्रोथ फेलियर्स एंड अदर थिंग्स आ जाती हैं, और इनकी जो दवाइयां होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग दवाइयां होती हैं, कभी कभी इम्यूनो सप्रेसेंट चलती हैं, तो बहुत लंबे टाइम तक ये चलती हैं और ये आजीवन चलती हैं। तो बच्चों में जब दवाइयाँ देंगे तो ऑब्वियसली कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा होगा तो उसको ऑल नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक ये दवाई लेनी है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईबीडी का प्रोफाइल बच्चों में।
0: आपने कहा आजीवन चलती हैं, तो ये क्या ठीक नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होता?
1: नहीं मैम, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, ये डिजीज भी एक क्रॉनिक डिजीज है, इसमें दवाइयाँ कंट्रोल कर सकती हैं बट क्योर नहीं कर सकती। क्योर मतलब हम समझते हैं हमारी भाषा में, हमारे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर वो डिजीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में भी 6 से 9 महीने तक दवाई देते हैं, उसके बाद टीबी खत्म हो जाती है, उसके बाद और देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे डायबिटीज है, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई से कंट्रोल हो सकती है लेकिन आज तक साइंस, इंग्लिश साइंस में वो क्योर नहीं हो सकती। मेडिसिन हाइपरटेंशन, आपको आजीवन दवाई चलेगी, दवाई लेंगे तो कंट्रोल होगा, दवाई नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। ऐसे ही आईबीडी में, आईबीडी में भी दवाइयाँ चलती रहती हैं। एंड इनफैक्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की भी एज होती है, आपकी भी एज होती है, तो बीमारी की भी एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे आगे आएंगी, तो दवाई की डोज भी बढ़ेगी, डिफरेंट दवाइयाँ भी यूटिलाइज होंगी और आगे आगे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। इसीलिए आपको डॉक्टर्स की निगरानी में रहना चाहिए। पर अच्छी बात ये इसके साथ ये है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी होती है, इसमें दवाई लेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ओके, आप एकदम हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पेशेंट्स क्या है, 2-3 साल बाद जब ठीक हो जाते हैं तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि इतने अच्छे हो गए। बट आमून ऐसा होता है कि वो फिर 6 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा उनको सिम्टम्स आ जाते हैं, दे कम बैक टू अस अगेन।
0: तो इसका मतलब कि अगर इतने लंबे समय तक आजीवन की बात कर रहे हैं आप, तो दवाइयाँ लेने का बाकी इससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज मेडिसिन तो अफेक्ट करते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं, और कोई बीमारी भी हो जाने का डर होता है?
1: ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जब हम लंबे देते हैं तो नॉट ओनली दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस बट दवाइयों का खर्चा भी होता है, ये भी मन में रखना पड़ रहा। बट अच्छी बात यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं, मिसिलेमिन, ये बहुत अच्छी दवाई है। 99% पेशेंट्स में स्टेबल रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ इसमें साइड इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाता है, इसलिए हम हमेशा इस दवाई के साथ फोलिक एसिड देते हैं और ये चलती रहती है। लोग 5, 10, 20, 30 साल तक लेते रहे। आई हैव मेनी पेशेंट्स हु हैव टेकन टिल 15 टू 20 ईयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम।
0: डॉक्टर साहब, फोलिक एसिड से भी तो कॉन्स्टिपेशन

0: हो जाता है।
1: फॉलिक एसिड तो एक विटामिन है मैम। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अच्छी चीजों का भी एक्सेस अच्छा है।
0: बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में तो जरूर खिलाते हैं
1: yes, yes.
0: और बहुत सी वेमेन को होता है ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ये बात जानती थी कि फॉलिक एसिड से हो जाता है।
1: मैम कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी इज ए डिफरेंट साइंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सो टुडे टॉपिक नहीं है बट
0: कॉन्स्टिपेशन वो भी एक बॉबल प्रॉब्लम
1: डेफिनेटली प्रॉब्लम।
0: चलिए हम यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।

0: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे एक दो लिसनर्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम जतिन है, मैं आंखों से दृष्टि बाधित हूँ।
1: जी, सवाल पूछे।
2: जी, सवाल ये है, हमारे पापा के दो दिन से लेटरिन आ रही है मैम। ठीक, हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे, वो जैसे खिचड़ी भी खाते हैं, दवाई भी ले रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो उसके पश्चात भी नहीं बंद हो रही है सर।
1: लूज मोशन हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
2: जी मैम, ऑफ कोर्स।
3: कितने दिन से हो रहे हैं?
2: जी सर, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपको नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: दो तीन दिन से हो रहे हैं सर।
3: दो तीन दिन से हो रहा है। स्टूल में ब्लड वगैरह भी आ रहा है क्या?
2: नहीं, हाँ सर, एक बार आया था लेकिन आँख बन गया था।
3: तो ये तो अगर दो तीन दिन से ही आ रहे हैं, क्या ये अभी दो तीन दिन से आ रहे हैं या बहुत मतलब पहले भी रिपीटेड आ रहे हैं कि हर 15-20 दिन में ऐसे दो तीन दिन बार आ रहे हैं?
2: नहीं, हर दो तीन दिन में, सुबह शाम
3: आ रहे हैं। कितने दो तीन दिन से ही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हर महीने दो तीन दिन आता है?
2: नहीं ओके, दो तीन दिन से आ रहे हैं। दो तीन दिन से
3: ठीक है।
2: दो तीन दिन से।
3: तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, इसमें आप पेशेंट को ORS दे दीजिए, लोकल किसी ORS का घोल दे दीजिए और स्टूल टेस्ट करा लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि किस तरह सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई और बीमारी है। ज़्यादातर ये दो तीन दिन आप और ORS देंगे और उनको दलिया, खिचड़ी, पोहा, चिरुआ, तरल पदार्थ दे देंगे तो उसी से ठीक हो जाएंगे।
1: थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हेलो।
4: हेलो
1: जी, कौन?
4: हाँ जी मैडम,
1: अपना सवाल पूछे।
4: मैडम, हमें ये पता करना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आए हुए हैं, कि हमें सुबह सुबह मैं एक टैबलेट लेता हूँ खाली पेट, काफी लंबे समय से ले रहा हूँ, उसके बारे में पूछना है, क्या लेना उचित है?
3: हाँ, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुणाल बोल रहा हूँ।
4: अच्छा, डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक तो मेरे को प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद मेरा खाना ऊपर आता है
3: जी,
4: और दूसरी प्रॉब्लम है मेरे को डकारें बहुत आती हैं
3: जी,
4: तो मैं ये जब टैबलेट लेता हूँ तो मेरे को रिलीफ रहता है, सुबह खाली पेट लेता हूँ, उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाना पीना होता है
3: जी,
4: उससे रिलीफ जरूर रहती है मुझे
3: जी,
4: तो लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी है, खाना भी ऊपर आता है और खैर डकारें भी बहुत आती हैं, लेकिन पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूं, यदि कुछ बता दीजिए।
3: ठीक है, तो ये आपको जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, ये आम भाषा में एसिडिटी और गैस एसिडिटी की बताते हैं। इसमें दो मेन, एक तो आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा है ये जो पेंटोप्रिजोल की दवाई आप ले रहे हैं, तो ये बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाई है और जो डोज में आप ले रहे हैं, एक ही दवाई ले रहे हैं, ये आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बट जिस टाइम लिमिट में कॉम्प्लिकेशंस आती है वो लंबी है, जब 4-5 साल ले लेंगे तो इसमें किडनी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अगर 10 साल तक लेंगे तो बोन्स वीक हो सकती है। आप मेन दवाई के साथ साथ डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखें, खट्टी चीज़ें का सेवन ना करें, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, दूध ना ले और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और ऑयली और स्पाइसी चीज़ों का सेवन ना करें।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं एक ये मैसेज शामिल कर रही हूँ। इनका नाम अंगद यादव है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि मेरी उम्र 34 वर्ष है, मुझे गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने कहा था दूध नहीं खाने के लिए, मीठी चीज़ों को भी मना किया था, कहा कि मीठे से एलर्जी है। मैं 6 महीने बाद दूध पिया, मुझे चक्कर आने लगा, 5 मिनट बाद ठीक हो गया, ये क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं?
3: ये जो दूध नहीं पीना जो मना करना है, ये ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्टोज शुगर होता है जो कि दूध में होता है, जब बच्चे होते हैं ये माना गया है रिसर्च के द्वारा दैट आफ्टर 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 73% ऑफ द एशियन पीपल में बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो हमारे अंदर एक एंजाइम होती है रेनिन, जो छोटे बच्चों में तो होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो नहीं होती, इसलिए हम दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आज इनके डॉक्टर्स ने मना किया हुआ होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी कुछ मैसेजेस हैं उसे मैं शामिल कर लूं। ये संध्या गुप्ता जी का है, गजरौला उत्तर प्रदेश से। लिखती है, सर, आर सार्कोडिस और अमाइलोडोसिस आर डिजीज ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन?
3: Yes, they may be, but they are mainly diseases of the lung.
1: Okay. And ye pucha hai, if I eat anything spicy, then I have to rush to the restroom. Is it a symptom of IBD? Naam aapne apna likh ke nahi bheja hai.
3: Yes, they may be a symptom of

0: IMD, you need to be investigated by a proper gastroenterologist doctor.
1: मुझे हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट में मैला अब्सॉर्प्शन एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन फाइंडिंग हुई है एंड एंडोस्कोपी में इसोफेजुअल बल्जिंग फाइंडिंग हुई है. तीन चार सालों से भूख नहीं लगती है और बोवल मूवमेंट हार्ड होता है. बताने के लिए कृपा करें, मेरी उम्र 47 है, क्या आईबीडी से लिंक है? नरेंद्र सिंह, हरिद्वार, उत्तराखंड से.
0: ये आईबीडी से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं लगता, बिकॉज इन्होंने जो मैल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम बताया है, एक बहुत छोटे तरीके में क्रोन्स डिजीज जो भी आईबीडी का होता है, स्मॉल बावल, ये हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाय टर्म्स ऑफ सीटी एंट्रोग्राफी और एंड मे बी स्पाइरल एंट्रोस्कोपी करके, बायोप्सी करके, कि इनको क्या डिजीज है.
1: ओके, इकोलाई होने से क्या ये बीमारी होने का खतरा है? और इस बीमारी ये किस लिए होता है, आईबीडी क्यों होता है, ये तो बताया अभी आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया.
0: डिजीज होती है आईबीडी एंड ईकोलाई से एक्सेसिबेशन हो सकती है, लेकिन मतलब बीमारी बिगड़ सकती है, बट ये बीमारी कॉज नहीं करती. ईकोलाई डजंट कॉज आईबीडी.
1: ओके, और ये पूछा है ककरोला द्वारका से शंकर लोध ने कि सर माय क्वेश्चन इज इफ आई हैव गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देन आई हैव सीवियर हेडेक, देन व्हाट एल्स इज टू बी डन बाय माय सेल्फ. सरदर्द बहुत होता है दासवाली
0: हाँ,
1: से.
0: इट इज़ वेरी कॉमन. जैसे मैंने गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में लाइट हेडेडनेस, हेडेक, या वो माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है. तो इट इज़ अ चिकन एंड एग सिचुएशन दैट हेडेक कॉजेज गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्राइटिस कॉजेज हेडेक. तो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर बोथ एंड सी कंट्रोल वन ऑफ देम एटलीस्ट. एंड ऑल्सो डाइट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. जैसे डाइट में अगर गैस्ट्राइटिस है तो दूध ना लें, ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना लें, खट्टी चीजें ना लें, खट्टे में नींबू, संतरा, मौसम्बी, अचार, आमला, इमली, इन सेवन ना करें. ज्यादा फ्राइड फूड्स, बटर, घी का सेवन ना करें. राजमा, छोले, फूलगोभी ना लें. ऑयली एंड स्पाइसी फूड ना लें. ये इनको कंट्रोल करें तो शायद आपके गैस्ट्राइटिस कंट्रोल हो जाए, तो हो सकता है कि हेडेक भी कंट्रोल हो जाए.
1: बहुत बढ़िया. एक लिस्नर से जुड़ते हैं मुंबई से. हेलो.
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं.
2: सदाशिव पालकर, नवी मुंबई सानपड़ा.
1: जी, क्या सवाल है आपका?
2: मेरा सवाल है, लूज मोशन का तकलीफ है. डॉक्टर साहब को नमस्कार.
0: नमस्कार जी, सदाशिव जी.
2: डॉक्टर साहब, मुझे लूज मोशन की तकलीफ ऐसी है कि लूज मोशन ये होता नहीं है. एक दिन छोड़ के होता है तो कड़क पत्थर के जैसे तो ऐसा होता है. अगर एक दिन मैंने त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा होता ही नहीं. दूसरे दिन त्रिफला लिया तो हो जाता है. त्रिफला न लो तो दूसरा दिन टॉयलेट होता ही नहीं. क्या समस्या हो सकती है?
0: तो ये आपको जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है. इसमें आप त्रिफला ले रहे हैं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले फूड एंड वाटर को ध्यान में रखना पड़ेगा. वाटर आप करीब करीब 10 से 12 ग्लास लें और साथ में फाइबर खाने में ज़्यादा लें. फाइबर होता है सलाद, फ्रूट्स, इन सब में होता है. तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप तीनों टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का लें. इससे आपके बॉडी में फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है कि अपने आप से ठीक हो जाए. साथ
2: क्या कटोरी लेना है सर? सॉरी,
1: सलाद. सलाद क्या लेना है?
2: सलाद, सलाद, सलाद एक कटोरी लेना है.
0: एक कटोरी तीनों टाइम, सुबह, दोपहर, रात को, तीनों टाइम खाने के साथ एक कटोरी सलाद का लें. और आप एक छोटा सा डायबिटीज और थायराइड के लिए अपना ब्लड टेस्ट करा लें, क्योंकि ये दोनों सबसे कॉमन डिजीजेस होते हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है.
2: नहीं, मुझे सर ये मुझे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या नहीं मुझे.
1: बहुत बढ़िया, आप सैलेड खाइए एंड जैसा डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत फायदा पहुंचेगा. डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया आपसे पूछूं कि आईबीडी मुख्य रूप से किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है. जैसे एक तो ये आपने बताया तो मुझे लगा.
0: जी, एक्चुअली ये आईबीडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक है डायबिटीज के साथ भी और थायराइड के साथ भी, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑटो इम्यून डिजीज कहा के कॉन्टेक्स्ट में आता है. ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे बॉडी में कुछ तत्व होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं. ज़्यादातर इनका काम होता है कि बाहर से एक्सटर्नल जो बीमारियां या डिजीजेज आती है उनको रोकना, उनके साथ फाइट करना. बट कभी कभी कुछ कारणवश, जो अभी भी पूरी तरह से शोध नहीं पता है, बट ये लिम्फोसाइट्स बॉडी की ही डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो आईबीडी में लार्ज इंटेस्टाइन बाउल को डैमेज

0: करती है तो उनका नाम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाता है। अगर वही लिम्फोसाइट्स हमारे थायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन थायराइड हार्मोन बनाता है उस ग्लैंड को इफेक्ट करती है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के संदर्भ में आ जाता है। और पैंक्रियाज हमारी एक और ग्लैंड होती है जो कि स्टमक और इसके बीच में होता है इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि आम ज़्यादातर ये शुगर कंट्रोल करने में रहती है। अगर उनको हम वो ऑटोइम्यून डिजीज इफेक्ट करती है तो वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इनका कॉन्टेक्स्ट है
1: ये
0: एंड
1: सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
0: कॉम्प्लिकेशंस एंड इन सब में जो इनको आईबीडी भी होती है उनको ये डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो सकती है, थायराइड की बीमारियाँ भी ज़्यादा हो सकती है। और जिनको आईबीडी है इन बीमारियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा सीवियर भी हो सकती हैं आईबीडी पेशेंट्स में।
1: क्या पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जा सकता है इसे डॉक्टर साहब या नहीं?
0: एक्चुअली पाइल्स और आईबीडी का एक ही कॉमन चीज़ है वो है सिम्टम कि दोनों में ब्लड आता है, बट अदरवाइज बेसिक चीज में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाइल्स हम जो टेक्निकली समझते हैं वो हेमोरॉइड्स के वजह से होता है। हमारे एनस के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्स्टिपेशन में वो एंगॉर्ज हो जाती है और ब्लीड करती है, उसको हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स इज यूजली पेनलेस, उसमें लूज मोशंस नहीं होते, इनफैक्ट उसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, स्टूल्स ज़्यादा हार्ड आती है, उन्हीं को पाइल्स होता है। अदर देन द ब्लीडिंग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में पेट में दर्द होता है, पाइल्स इज पेनलेस। इसमें लूज मोशंस होती हैं, पाइल्स में स्टूल्स हार्ड होती हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली रिवर्स।
1: ओके, हम और भी बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करेंगे लेकिन यहां पर लेते हैं ब्रेक।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जिंदगी भले ही रुलाए लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे ना तो उतना रोना नहीं पड़ेगा, कम से कम जिंदगी थोड़ी आसान जरूर रहेगी, है ना डॉक्टर साहब। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक मैसेज आया हुआ है एडवोकेट वारिस अली खान साहब का संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से, पूछते हैं कि क्या कोलाइटिस पेशेंट को मीठा नहीं खाना चाहिए, एक सवाल है। दूसरा है कोलाइटिस पेशेंट को क्या कब्ज भी होता है, और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब।
2: देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइटरी एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है। तो दूध इज अवॉइडेड बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक।

0: और उन्होंने एक सिरप का नाम लिखा है कि वो ले सकते हैं क्या, जो ये नाम हम यहाँ नहीं ले सकते डॉक्टर साहब?
1: देखिए ऐसा है, कोलाइटिस पेशेंट को हम जो डाइट्री एडवाइस है वो सिंपल रखते हैं कि आपको दूध और सलाद नहीं लेना है. तो दूध इज अवॉइडेड, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, विच इंक्लूड्स मिठाई ऑल्सो, खोया ऑल्सो, एंड सलाद नहीं लेना है, वो मना करते हैं. सेकेंड आपका सवाल था कि क्या कोलाइटिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है. एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो कोलाइटिस में वर्चुअल होता है, इन द सेंस. मैं क्यों वर्चुअल कह रहा हूँ, इसलिए वर्चुअल कह रहा हूँ क्योंकि जब हम जाते हैं कभी कभी कोलाइटिस में म्यूकस आता है, लेकिन कभी कभी अर्जेंसी होता है एंड देयर इज अ नो शो. एंड इसमें क्या है, क्योंकि कोलोन के पता लार्ज बाउल के सतह में इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो सिग्नल्स देता रहता है कि उसमें कुछ आएगा, लेकिन देर इज नो स्टूल देयर टू एक्सपेल. इसीलिए पेशेंट को बार बार पॉटी में जाना पड़ता है, एंड सिर्फ गैस के अलावा और थोड़ा म्यूकस के अलावा उसको निकलता नहीं है, तो इसको हम अर्जेंसी कहते हैं. एंड ये कॉन्स्टिपेशन जो टिपिकली हम समझते हैं कब्स, क्योंकि स्टूल हार्ड हो जाता है, एक्सपेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पत्थर जैसे मार्बल पैलेट्स रहता है, वैसा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता आईबीडी में. इट्स अ डिफरेंट कि आपको अर्जेंसी आती है स्टूल जाने की, एंड व्हेन यू गो देयर इज अ नो शो कि कोई स्टूल निकलता नहीं है.
0: एक ये मैसेज है, प्लीज टेल अस अबाउट एसजीओटी टेस्ट एंड वेदर देयर इज एनी कनेक्शन विद लॉस ऑफ एपेटाइट इफ दिस टेस्ट रिपोर्ट इज हाई. दिल्ली से yes. नाम नहीं भेजा.
1: एसजीओटी जो है ये एक लीवर एंजाइम है जिसको हम सीरम ग्लूट एएसटी कहते हैं. ये एक लीवर का एंजाइम होता है जो कि लीवर डैमेज, लीवर डिजीज में ये एलिवेटेड होता है. तो डेफिनेटली अगर किसी को लीवर डिजीज है, एक्यूट लीवर डिजीज है, उसमें एक ऑफ सिम्टम लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, जॉन्डिस होता है, जनरल इनएबिलिटी, जनरल मलेस होता है, तो डेफिनेटली हो सकता है एंड इट नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एंड डॉक्टर के पास जाए, उनको बताए पूरे सिम्टम्स बताएं, कंप्लीट सिम्टम बताएंगे, तभी इनका पूरा डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाएगा.
0: डू स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो ट्रिगर आईबीडी?
1: यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टेल. आईबीडी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन एंड टेंशन. सो स्ट्रेस डेफिनेटली, एंग्जाइटी डेफिनेटली इसको प्रभावित करती है. एंड ये कहा भी जाता है कि ये टाइप ए पर्सनैलिटी जो कि ड्रिवन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है. एंड ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी स्ट्रेस पॉइंट आपके लाइफ में आएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम्स आ रहा हो, या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, या फैमिली में कोई अघटन हो गया हो, या ग्रीफ हो गया हो, तो भी ये जो बीमारी है ये बिगड़ जाती है, जो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्लेयर अप. अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्लेयर अप हो जाता है, आईबीडी फ्लेयर हो जाता है. देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन, एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर मेडिकेशंस फॉर दैट फ्लेयर अप आल्सो.
0: ओके डॉक्टर साहब, क्या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है आईबीडी जिनको होता है?
1: जी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादातर जो इसकी दवाई होती है वो स्टेरॉइड्स होती है, और कभी कभी हमें लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है. क्रोन्स डिजीज जो एक स्मॉल बाउल काउंटर पार्ट होता है, उसमें एटलीस्ट 6 to 8 weeks तक स्टेरॉइड्स देनी पड़ती है. उनमें ये देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वी शुड गेट आवरसेल्व्स इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, और एक होता है बोन डेंसिटोमेट्री और बीएमडी, वो भी टेस्ट करके देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का और बोन बीएमडी अगर वीक है तो दोनों का सॉल्यूशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिंस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है अगर बोन्स सपोज वीक हो गई एंड कहीं पे आप गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली बिकॉज आईबीडी जो है एक्टिव, इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप में होता है, 25 to 45 ग्रुप में ज़्यादा देखा गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस चीज को ख्याल रखें एंड टेक केयर करें.
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. एक और मैसेज है चाणक्य चौक गाजियाबाद से, पूछते हैं कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट या जो व्यक्ति 3 या 4 बार चाय पीता है या कॉफी पीता है, क्या उसको भी आईबीडी जैसी समस्या हो सकती है?
1: डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट यह है कि कॉफी या उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बट आईबीडी का होना कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखा गया है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि कॉफी से आईबीडी हो जाएगा. सो इट्स नॉट पॉसिबल.
0: ओके, एंड ही 70 ईयर

0: पर्सन फ्रॉम रांची उपेंद्र मिश्रा, वो जानना चाहते हैं कि मुझे करीब 15-20 दिनों से सुबह नाश्ते के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है, लूज नहीं होता है, नॉर्मल होता है, कृपया कारण और निदान बताएं।
1: देखिए, ये एक हमारे मेडिकल साइंस में ये कहा गया है कि जो स्टूल फ्रीक्वेंसी है वो 3 per week to 3 per day एक नॉर्मल रेंज है। जैसे हर चीज़ का एक नॉर्मल रेंज हुआ करता है। एक ये मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम रोज फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है ऐसा। इट्स नॉट दैट रोज आपका फ्रेश होना है। हर इंसान की अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को ऑल्टरनेट डे आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है, सो दैट इज नॉट अ एबनॉर्मल थिंग एट ऑल। जैसे किसी भी बच्चे का एज ग्रुप या वेट ग्रुप होता है, एक रेंज होता है, तो इसमें भी एक रेंज है जो 3 per week to 3 per day। तो इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेंज से बियॉन्ड फ्रीक्वेंसी है कि आप 3 या 4 बार से ज्यादा जा रहे हैं पर डे, या हफ्ते में एक ही दिन जा रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन और दूसरा है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी क्या है, एक सिंपल आकार में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर वो हार्ड आ रहा है, मार्बल्स की तरह आ रहा है, पत्थर की तरह आ रहा है, यस इट्स अ प्रॉब्लम। अगर वो पानी की तरह आ रहा है, दलदल की तरह आ रहा है, इट्स अ प्रॉब्लम। तो इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, कंसिस्टेंस नॉर्मल है, सो ही शुड नॉट वरी एट हिज एज। ओनली कैवियट इज अगर वेट लॉस हो रहा है 70 साल के एज में, देन ही मस्ट गेट इन्वेस्टिगेटेड।
0: तो आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि आपका वेट भी कम हो रहा है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया। हम लेते हैं ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और हमारे एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता से, तो हम जल्दी से उनसे बातचीत कर लें। हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछ लें।
1: मुस्तफा कमल
0: जी, क्या सवाल है आपका?
1: मेरे बवासीर हुआ है या क्या हुआ है, मेरे लेटरिन के रास्ते में परेशानी है, लेटरिन मेरा कोना होके आ रहा है।
0: पूछना क्या चाहते हैं जी? ये सब सुन लिया क्या?
1: हाँ, यही समस्या है मेरा, इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ बीमारी से मैं कैसे रिलीफ पाऊंगा और क्या क्या मुझे खाना चाहिए।
0: सुन लीजिए, डॉक्टर बता रहे।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
2: आपका जो ब्लड में स्टूल में ब्लड आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है?
1: ब्लड नहीं आ रहा है सर, 3 साल से यही बीमारी है, मेरा ब्लड नहीं आ रहा है।
2: क्या आ रहा है?
1: मैं से अंदर कोई फूल गया होगा शायद, लेटरिन कोना होके आ रहा है।
2: लेटरिन क्या हो रहा है?
1: कोना होके आ रहा है, बिल्कुल ही
2: कोना होके आ रहा है। अच्छा
1: हाँ।
2: ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, आप बांग्ला में बोल लीजिए, मैं बंगाली समझता हूँ, बांग्ला बुझते भारी। आपने बांग्ला में बोलूँ कि असुविधा होच्छे एक बार?
1: हाँ, আমার ওই যে লেটিং কে রাস্তাটা আছে না, যেরকম ওই ফোড়ার মতন হয়ে গেছে আর ডাক্তার বলেছে যে ওষুধের জেরিয়ায় মনে হয় ভালো হয়ে যাবেন। এখন আমি ৬-৭ ডাক্তারকে দেখাচ্ছি, আমার হয়নি এখন।
2: আপনার কলোনোস্কোপি হয়েছে?
1: হ্যাঁ, কলোনোস্কোপি করেছি, যে ডাক্তারটা বলেছে শিলিগুড়ির ডাক্তার বলেছে আপনার ফিশার হয়েছে।
2: फिशर तो ये जो आपको हुआ है, इनको टट्टी के रास्ते फिशर हुआ है। फिशर होने पे आपको इसका अगर दवाई से नहीं ठीक हो रहा तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
1: एक बार ऑपरेशन किया था एक डॉक्टर ने, हुआ नहीं।
2: अच्छा, फिर आपको मैं ये बता सकता हूँ अपने नॉलेज से, दैट वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल PG हॉस्पिटल है कलकत्ता में। वहाँ जाके किसी अच्छे सर्जन को दिखाइए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
0: तो बिल्कुल आप ऐसी कोशिश करें, जाकर वहां पे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, उन्होंने बता दिया PG हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या खाने पीने में कुछ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की बीमारी से आप दूर रहें, और ट्रीटमेंट, ये दोनों चीजें आपसे जानना जरूरी है।
2: जी, आपने बहुत ही दो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। ये खाना पीना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन IBD, और हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि और बताया है कि दूध और सलाद थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड, प्योर मिल्क, बट मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन टेक, जैसे आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, छाना ले सकते हैं। प्योर मिल्क हैज़ टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज सैलड हैज़ टू बी अवॉइडेड, कि सलाद ना ले, उसके अलावा सब कुछ ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, रॉ फूड तो आपने कहा कि बहुत जरूरी है खाने में,
2: नहीं, जिनको IBD है उनको नहीं लेना। इन जनरल जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फॉर हेल्दी लाइफ इट इज रिक्वायर्ड, बट IBD में नहीं करना। क्योंकि एक इनका IBD का पार्ट होता है क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है कि स्मॉल बाउल में, छोटी आंत में स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, रुकावट बन जाती है। तो सलाद अगर आप लेंगे तो उस एरिया में जाके फंस जाते हैं एंड दे लीड टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। दैट इज वाई हम इनको मना करते हैं कि आप सलाद मत ले, फाइबर ज्यादा नहीं लें। दूसरा जो है, आप हेल्दी डाइट लें, यू कैन टेक गुड सीरियल्स, फूड्स, ये सब आप लेते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो आपने बताया ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रीटमेंट हमें ज़्यादातर दवाइयाँ चलती हैं और बहुत ही 5-10% में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बहुत ही लिमिटेड केस में, वो मैं अभी 2 मिनट में आके बताऊंगा। नॉर्मली हम जो फ्लेयर अप जब होती हैं तो हमें यूज करनी पड़ती है स्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन। और स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोविड में बहुत लोगों ने स्टेरॉइड्स लिया, सबको पता है स्टेरॉइड्स के बारे में। बट हमें स्टेरॉइड्स लेनी है, शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं, यूजली हम 2 वीक्स का स्टेरॉइड्स देते हैं और फिर स्टेप डाउन थेरेपी करते हैं, धीरे धीरे करके स्टेरॉइड्स को विद इन 6 वीक्स कम कर देते हैं। और ज़्यादातर ये दवाइयाँ जो है होती है मिसलेमिन दवाई होती है जो कि चलती है, एंड ये लंबे टाइम तक 1.2 ग्राम ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे करके हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स ए वेरी वेरी स्टेबल मेडिसिन। बट कुछ और दवाइयाँ भी होती हैं जिनमें कि जैसे ये दवाई नहीं काम करे तो सेकेंडरी कॉज में हम इम्यूनो

0: सिंस एजाथायोप्रीन यूज कर सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर सकते हैं, और कुछ एक नई जनरेशन की दवाइयां आ रही हैं जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल्स, जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज होती हैं,
1: जी
0: इस वो यूज कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं एंड इट इज डेफिनेटली कंट्रोलेबल वेरी वेल। एंड कुछ ओनली टू मिनट्स लूंगा, और कुछ बहुत सीवियर केस में फल्मिनेंट कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्रोन्स कोलाइटिस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतने अहम विषय पे इतनी सारी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थे डॉक्टर कुणाल दास, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब अगेन।
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई विल एंड बाय ओनली थिंग, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: दी फूल।
1: हम कहा इका दे तो हम कहा फूल, का दे तो फूल।
2: हाथ जोड़ कर फिर वो बोली, हो गई हमसे भूल।

0: खुंदा है रोज सिरप हो सकदा है कि
1: जी
0: जो
1: रूह अफ़ज़ा
0: गुलाब रूह अफ़ज़ा
1: जी
0: ते ओ जेड़ा गुलाब, क्योंकि सिर्फ कला गुलाब नहीं ना, होर भी बहुत सारे निके
1: हाँ
0: निके जेड़े मसाले होंगे ने, मिठा तो हुंदा ही है,
1: जी
0: बढ़िया अलग अलग जड़ी बूटियां दे नाल तैयार किया, ते उस दे नाल उस दे नाल भावें दुध च घोलिया होवे ते भावें पानी दे विच ते भावें बर्फ़ दे गोले दे वांग पा के खाधा जाए तो बड़ा स्वाद लगता है। रूह अफ़ज़े वर्गा ही एक ना होर ड्रिंक मेरे इत्थे आन जा रहा है, पहाड़ां दे विच ना हिमाचल च एक फुल लगता है लाल रंग दा, देखिया तुसीं कदी?
1: नहीं
0: जे असीं शिमले वल जां पहाड़ां वल जाइए मसूरी वल ना, उत्थे एक लाल रंग दा बुरांस दा फुल लगता है।
1: ओके
0: बुरांस दा शरबत भी बहुत ही स्वाद हुंदा, लाल रंग दा, ब्राइट कलर दा, ते ओह वी गर्मियां च बड़ा कमाल दा हुंदा शरबत।
1: ओके मतलब मैं लगता कि हर एक जगह दी अपनी एक स्पेशलिटी है, जिथे कुछ ना कुछ मिलेगा, जिथे तुसी जाके उन्हां दी उत्थे दी कूलिंग ड्रिंक्स तुसी ट्राई कर सकते हो।
0: बिल्कुल, ते थोड़ियां होर ड्रिंक्स की भी गल करनी है तुहाडे नाल, बढ़िया इंटरेस्टिंग ने। एक प्रोटीन ड्रिंक भी है, वो भी मेरे ध्यान च आ रही है, पर उस तो पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लैने हैं, ते होर भी कुछ गल्लां कि मैं धुप तो धुप के नाल अपने आप को ठंडा रखिया जा सकता है।

प्रोग्राम तुसे सुन रहे हो लव यू जिंदगी अपने दोस्त आरजी शाहिन दे नाल। ते गल आपां कर रहे हां इक इदां दी कीमती चीज़ दी जिहड़ी कि जिन्ना मर्जी आपां ट्राई कर लवांगे लेकिन मुड़ के कदे वापस नहीं आ सकदी। समा, टाइम, वक्त। मैं थोड़े नाल जिहड़ी एक छोटी जी स्टोरी शेयर कर रही सी, जिहड़ा वो मुंडा सी दीपक नाम दा, नाम मैं तुहानूं हाँ पहला नहीं दस्या सी लेकिन उस करैक्टर दा नाम आपां रख्या है जी दीपक। दीपक हर काम नूं कल कल कल करदा रहिंदा सी ते एक दिन उहदा जिहड़ा उह जिहड़ा उसदा कल है उह कदे आया ही नहीं। उहदे स्कूल दा एक दोस्त सी जिहड़ा बहुत एवरेज सी स्टूडेंट पर अज बहुत ज़्यादा सक्सैसफुल एक बिजनेसमैन बन चुकिया सी। ते उह जिहड़ा मुंडा सी उसने अपने दोस्त तो पुछया, यानी कि दीपक ने उस अपने दोस्त तो पुछया कि यार तेरे च तां मेरे तो घट टैलेंट सी फिर भी तू इन्ना वड्डा बिजनेसमैन बन गया है। तो फिर दीपक दे दोस्त ने पूछा कि हाँ बिल्कुल तेरे च तो मेरे तो ज़्यादा टैलेंट से फिर भी तू पिछे रह गया, अज कुछ कर नहीं रहा। तो दीपक ने किया, उसने एक ही लाइन बोली, कहिंदा कि मैं टाइम नू सीरियस नहीं लेता तो टाइम ने मैनू पिछे छड़ दिता। जो आप टाइम नू सीरियस नहीं लेंदे तो टाइम भी सानू सीरियस नहीं लेंदा। ये लाइन सिर्फ स्टोरी लई नहीं है, जिंदगी दी रियलिटी है। अज असी एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे आप फोन चलाते हैं, स्क्रॉल करते रहते, सोशल मीडिया से अपना टाइम वेस्ट करते रहे। हाँ सानू इंजॉयमेंट हुंदा, एंटरटेनिंग जड़ी हैगी ये चीज़ है, लेकिन एक टाइम ते आके सानू रियलाइज़ हुंदा, जिंदगी दे उस मोड़ ते आके सानू रियलाइज़ हुंदा कि आज जो आपा करना सी, जिस मुकाम ते आपा पहुँचना सी, उस मुकाम ते आपा नहीं पहुँचे। किस दे करके? क्योंकि आपा टाइम वेस्ट करता, रील्स देखते दे हुए जिहड़े सुपने ने वह डिले हुंदे जा रहे ने। पर याद रखो, जिस दिन वक्त हथों निकल गया ना, उस दिन रिग्रैट ही करते रह जावांगे ते मुड़ के जिहड़ा वक्त है कदे नहीं आएगा वापस। जे असीं लाइफ 'च कुछ बनना चाहुंदे हां ते अज तो शुरू करो, परफेक्ट टाइम दी वेट ना करो, क्योंकि क्लॉक हमेशा चलती रहती है पर ओपरचुनिटीज़ बार बार नॉक नॉक नहीं करती तुहाड़े घर दे डोर ते, तुहाड़े ऑफिस ते, या जिथे भी तुसीं रहिंदे हो। हर सवेर एक नवा चांस लेके आती है, तुसी डिसाइड करो, स्लीप सोना या टाइम ते, कुछ करना या टाइम ते, उठना है टाइम ते, हर काम टाइम ते। जो आप कोई भी काम इधर टाइम ते करांगे ना, मैंने लगता एक दिन औखा होएगा, दो दिन औखे होंगे, तीजे दिन चौथे दिन करते करते सानू आदत हो जाएगी। फिर जिस दिन साडा कोई काम टाइम ते नहीं होएगा ना, सानू अपने आप इजा लाइक महसूस होएगा कि हाँ अज पूरे दिन च कोई कमी रह गई है, कुछ ना कुछ अधूरा है। ये अधूरेपन नूं पूरा करन वास्ते सब कुछ टाइम ते करना चाहिए। होर भी गल्लां बातां होणगियां लेकिन फिलहाल आपां सुणदे हां एक गीत निमरत खैरा दी।

0: नहीं आते, कुछ सूरत नजर नहीं आते, मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती।
1: हाँ जी दोस्तों, असी सुनिया डायलॉग नवाजुद्दीन जी की आवाज़ दे विच एक मूवी तो, और इन्हां दे कई मशहूर डायलॉग ने और कई फिल्मां भी ने। फिल्मां इन्होंने 70 तो वध कीतियां ने, तकरीबन 70 तो वध फिल्मां इन्होंने कीतियां ने, जिवें कि सरफरोश, जंगल, द बाईपास, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आ जा नच लै, मनोरमा, 6 Feet Under, ब्लैक फ्राइडे, उस तो बाद लेटेस्ट फिल्मों की मतलब और सारी लिस्ट मैं फॉरवर्ड अगे कर रहा। उस तो बाद अगे जिहड़ियां फिल्मां इन्होंने कीतियां वह है जी थम्मा, हीरोपंती 2, अफवाह, मतलब सीरियस मैन और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, और उदे विच कई फिल्मों के इन्होंने यानी कि सफलता भी हासिल की है। तलाश मूवी लई इन्हों 2013 एशियन फिल्म अवार्ड भी मिलिया। उस तो बाद रमन राघव 2.0 लई भी इन्हों अवार्ड मिलिया, एशियन पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड। उस तो बाद आईफा अवार्ड इन्हों मिलिया जी मॉम दे लई, और कई अवार्ड्स इन्होंने जितते ने, लिस्ट बहुत लंबी है। नवाजुद्दीन जी ने बॉलीवुड विच रियलिस्टिक एक्टिंग नू मजबूत कीता। उन्होंने दिखाया कि एक आम चेहरा भी असाधारण अदाकार बन सकता है। नवाजुद्दीन जी भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसने संघर्ष, टैलेंट और मेहनत नाल अपनी वक्री पहचान बनाई। उन्हां दियां फिल्मां, डायलॉग अते किरदार अज भी दर्शकां दे दिलां विच जिउंदे ने। ओह सिर्फ एक अदाकार नहीं सगो

102.6 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी फिल्मी दुनिया अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। और अगले कलाकार दे बारे गल करन दा टाइम जिहड़ा हो चुका है जी, बिल्कुल स्टूडियो ते खड़ी दे इस वेले 7:37 हो चुके ने जी, और टाइम किन्नी छेती अगे अगे भज्जी जांदा है पता ही नहीं चलदा। जी बिल्कुल जी, अज होर कलाकार जिन्हां दा जन्मदिन है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਰੀਸ਼ ਰਘੁਨਾਥ ਕਰਨਾਟ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अच्छा बताओ तो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, सारा घर चलाते हो, फिर भी घर वाले तुम्हारा इतना अपमान करते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता?
1: किस पर गुस्सा करूं? घर वालों के कहने पर कहीं अपमान होता है?
0: होता है, खूब होता है।
2: हाँ जी दोस्तों, ए सी जी डायलॉग इन्हों का स्वामी फिल्म दे विच्चों जी गल चल रही है जी गिरीश जी दे बारे, और गिरीश जी दे बारे बहुत सारिया गल्लां ने, मैनू खुद नहीं समझ आ रहा मैं कि गल पहला शुरू करा तो कितने खत्म करा, क्योंकि इन्हों के बारे बहुत सारिया गल्लां ने। हुण फिल्मों की ही गल करा तो फिल्मां इन्नियां ज़्यादा ने, इन्हां दी लिस्ट एड्डी लंबी है कि मैं सारिया फिल्मों के नाम नहीं लै सकता, क्योंकि इन्होंने कल्ली हिंदी फिल्मां नहीं, कन्नड़ फिल्मों के भी बहुत अपना जिहड़ा योगदान दिता, मलयालम फिल्म के तमिल फिल्मों के भी इन्होंने काम किया, तेलुगू फिल्म जिहड़ियां फिल्मां आ उन्हां दे विच भी, और कई सारिया मशहूर फिल्मां भी है। इन्हां दे अवार्ड्स की जे गल करा तो अवार्ड्स की लिस्ट भी बहुत ही लंबी है जी दोस्तों। लिटरेचर के लिए भी इन्हों तकरीबन 10 to 11 जिहड़े अवार्ड्स

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी रंगला पंजाब अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। जी अंबरसरां दे पापड़, हाँ जी सारे खांदे हो है ना जी बिल्कुल जी, पापड़ तो सारे ही खांदे ने। और ये पापड़ दे विच अंबरसर दा नाम क्यों जुड़िया होया जी, क्यों इहदा इतिहास है इहो जिहा, और इसका स्वाद बाकी पापड़ा नालों, मतलब अंबरसर दे जिहड़े पापड़ा उसका स्वाद बाकी पापड़ा नालों क्यों वखरा है, इस दे बारे थोड़ी जी जानकारी देन साडे मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने जी। बिल्कुल पापड़ वड़ियां अमृतसर तों इह साडे नाल जुड़े हुए ने।

FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और रात दे 9:04 स्टूडियो दी घड़ी दे विच इस वेले समा हो रहा है और तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। बिल्कुल जी, दिल चाहता है प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। और नंबर नोट कर लो जी एक बार, 9855101027 9855101027 ये नंबर तुसी नोट कर लिया, इनू कर लो सेव, फिर अपना व्हाट्सएप ओपन करो और ओपन करके अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी फरमाइश यानी हिंदी ते पंजाबी सोंग्स यानी मूवीज़ दे सोंग, पुरानी मूवीज़ दे सोंग जड़े आ वह सानू फरमाइश करनी है तुसी, और तुहाडा दोस्त कुलदीप तुहाडी फरमाइश जड़ी आ वह पूरी करेगा। दोस्तों रेडी कर लिया जी, नंबर फिर दस देना 9855101027 9855101027। आओ सुनने प्यारा जगह, तद तक मैं थोड़ी फरमाइशां देख लेना जी।

हाँ जी दोस्तों, एक मैसेज आया साढ़े को जी, लिख रहे ने आरजे जी आपको आदाब नमस्कार जी, नमस्कार एनी सॉन्ग, और लिख रहे ने दनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू, शुक्रिया जी एंड जी, लिख रहे ने बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। एक होर साढ़े को मैसेज आया आदरणीय मेज़बान जी, नमस्कार जी कोई भी गीत सुना दें जी, थैंक्स जी, और लिखे कि इन्होंने आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा जी ने, और एंड च प्लीज़ लिख रहे हैं, प्लीज़ लिखने की कोई गल नहीं जी, थोड़ा थोड़ा इन्हें इन्ने प्यारे प्यारे सोंग जोड़े तुहाडे वर्गे ही लिसनर्स जोड़े आ सानू रिक्वेस्ट कर रहे, फरमाइश कर रहे हैं, और असी उन्हां दी रिक्वेस्ट नू एहतराम

0: एक मैसेज है साडे कोल, FM दिल चाहता है प्रस्तुत करता जी नमस्कार, हम भी पक्के लिसनर हैं, ये पंजाबी लाइन गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। पुराने पंजाबी लोक गीत टप्पे की लाइन है, लिखा है जी किरण नरुला ग्रीन पार्क कपूरथला तो जी, प्लीज जी धन्यवाद जी। एक होर मैसेज आया साडे कोल जी, बलजिंदर कौर मुकेरियां मुरादपुर जट्टा कह रहे ने जी, जगजीत मनवीर सहजवीर और कह रहे ने एंड च वेले होके बैठे हैं जी। इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साडे कोल, कृष्ण कुमारी डाबी, भुपत कुमारी डाबी, राधा तंवर, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਰਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਵੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹਾਰੋਂ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਹੇਂ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੋਤਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। 98 55 10 10 27 9855101027।
1: वो दिन दूर नहीं दीपक जब जिंदगी मौत पर हंसेगी।
2: लेकिन कब, कैसे
1: मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो।

मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, एक राज है जो सीने में छुपा रखा है। है जमाना जिसे बेताब मिटाने के लिए मैंने उस याद को सीने से लगा रखा है। देखने वाले मुझे दर्द मोहब्बत की कसम, मैंने इस दर्द में दुनिया को भुला रखा है।

जब भी बंद होती हैं पलकें मेरी सनम, जब भी बंद होती हैं पलकें मेरी सनम, ख्वाबों में सिर्फ तेरा ही वजूद होता है। दुआओं में मांगी है बस एक ही खुशी, दुआओं में मांगी है बस एक ही खुशी, कि मेरा हर पल बस तेरे साथ मुकम्मल हो।

वक्त के दरिया में बहुत कुछ बह जाता है, पर यादों का कारवां वहीं का वहीं रह जाता है। दूरियों का असर कभी मिटता नहीं, दूरियों का असर कभी मिटता नहीं, अपनों की खुशबू का एहसास कभी छूटता नहीं।

धड़कनों की जुबां समझता है कौन, बिन कहे दिल की बात सुनता है कौन। प्यार की राहें तो बहुत हैं मुसाफिर, पर इस दिल का दर्द अपना समझता है कौन। मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हैं आंसू, इन आंसुओं की वजह जानता है कौन। नादान है ये दिल जो हर किसी पर आ जाए, नादान है ये दिल जो हर किसी पर आ जाए, पर इस नादान दिल को संभालता है कौन।

इस जीवन के रंग हजार होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। किसी के जीवन में जंग होती है तो किसी के जीवन से लोग दंग होते हैं। कोई जीवन के संग होते हैं तो कोई जीवन से तंग होते हैं। इस जीवन के हजार रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं। कोई जीवन के तरंग होते हैं तो कोई जीवन के पतंग होते हैं। इस जीवन के हजार रंग होते हैं, इसे जीने के कई ढंग होते हैं।